0: तो मैं कराओके तीबे
1: आना सी नाई ग्रेक में सी जिस लान
0: Ladies and gentlemen, Tia Darian, birahi kayo na klaro ng kanal.
1: Yes!